अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी

0: सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मुंहों कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधां दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख लै माए, हुन साम के रख लै माए, मेरे गुड़िया पर टोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी है माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी है माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी है माए, कंधा दे ओ लेनी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, मैनू पाने दी डोले नी। शुक्रिया साथो, बहुत बहुत मेहरबान।
1: प्यारे श्रोतियों, सुरेंद्र भोगल जी तो बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वास्ते शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक वड्डे पिंड कुकड़ पिंड नाल संबंध रखदे ने ते बहुत लंबे समय तों ओह बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे ओह इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल ओह ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਛੂਹਣਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸਮ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ।

गई, जिंदवाद आचे डूब गई, जिसम तरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर क्या भी नहीं,

डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी, वादे करी जांदे चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करा जे आपे चे की करा जे आपे चे, जिसम लड़ी जांदे ओ डूब जाना अजे भी, वादे करी जांदे जिंद वादियां चे डूब गई जिसम।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डुब गई, जिंद वादिया चे डुब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

वेखो तुसी साका जलिया दे बाग दा होया सी जुल्म उथे खूनी राग दा ऊदम जहे जो दे उड़वारा।

गीत लिखिया, गीत लिखिया मैं तेरे लई तां, तेरे वाजों सानू माए नी, किसे कुट सीने ना लाया, तेरा कर इंज जापदा।

आखदे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसना है बन के कटामा असी धरती बसना है धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने माणिया स्वाद है।

सुन लवो कागो असी कर देना सोनू पुठे, सुन लवो कागो असी कर देना थोनू पुठे। कुगियां दे बच्चियां नू कौन वाले ओ रोटी बच्चियां दे, रोटी बच्चियां दे।

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक।

छे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वसता पंजाबीओ, वसता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तर लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाणे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाणे जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी। तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणक आबरू खोण नी देनी, अणक आबरू खोण नी देनी, धरत मोहताज किसी

0: मेरे तो
1: सही गल
0: पूछा
1: है।
0: जा रहा है,
1: हाँ जी
0: जदों बच्चे नूं ये चीज लगेगी ना कि हाँ मेरे तो पूछा जा रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस है, दैट मीन्स ओदे ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाऊगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे तो कोई उम्मीद लगा के बैठे हुए ने, मैं उन्हें पूरी करना है।
1: सही गल है जी।
0: बट साइलेंस मोड दे विच, या आपां जिन्हों कह दिए अजकल दी जनरेशन दे विच, ये चीज बहुत जिहड़ी कम्युनिकेशन गैप आ गया है माता पिता और पेरेंट्स दे विच,
1: हाँ
0: इस नूं
1: जी
0: खत्म करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जी
0: बच्चे और पेरेंट्स दा जो रिलेशन है फ्रेंड्स दी तरह दा होना चाहिदा है।
1: बिल्कुल जी
0: बिल्कुल बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चे दे नाल फ्रेंड्स दी तरह ट्रीट करन, उन्हां नूं उन्हां दियां जरूरतां नूं ध्यान च रखदे हुए उन्हां नूं पैंपर करन, उन्हां नूं प्यार भी उन्ना ही करन, ते उन्हां नूं जिथे डांटन दी लोड़ है उथे डांटिया भी जावे। ते जदों गल आ जांदी है उन्हां दे भविख दी, तां उस टाइम ते उह बच्चे नूं प्रेशराइज ना करदे हुए या फिर बिल्कुल खुला ना छड्डदे हुए उन्हां नूं रिस्पॉन्सिबिलिटी दा एहसास दवाउण,
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी
0: तो टाइम टू टाइम पुछ के कि हाँ तू की कीता, की सिखिया, नवा की सिखिया, कुछ क्योंकि साडे लई बच्चियां दे लई साडे
1: हाँ जी
0: मोटिवेशन दा सोर्स होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जब तक उन्हां नूं मोटिवेट मोटिवेट नहीं करांगे, उन्हां दा मोटिवेशन नहीं होएगी उन्हां दे अंदर, तां ओह कुछ भी नहीं करनगे,
1: नहीं कर सकते।
0: ओह बस
1: सगन जी
0: चले जाणगे।
1: अज दे
0: हाँ जी
1: ज्यादातर बच्चे जिहड़े हैगे ना
0: हाँ जी
1: ओ
0: हाँ जी
1: पढ़ाई नू एक बोझ दी तरह लैंदे आ।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जिवें एक बोझ पिया हुंदा वी तां करनी पैणी है, पढ़ना पैणा है। एक उहनां नूं शौक नहीं हैगा, मजबूरी समझदे है। अजिहा क्यों हैगा?
0: हाँ ये भी देखो एक इस नूं असीं जोड़ सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रचलन हो गया है, साडा सोशल मीडिया दा भी काफी रोल है इस दे विच, काफी हद तक बच्चे यूट्यूब चलाना या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम ये
1: हाँ जी
0: सारी
1: हाँ जी
0: चीजें यूज करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं
1: हाँ
0: एज
1: जी
0: कंपेयर टू अपनी स्टडीज दे लिए।
1: बिल्कुल जी
0: तो उन्हें गेमिंग ऑनलाइन गेम्स का बड़ा क्रेज हो गया है, ते सॉन्ग्स दा लगा लो हर एक चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है जेडी एंटरटेनमेंट वाली है। बट बच्चियां नू ये चीज देखो ध्यान च रखने की बहुत जरूरत है कि अगर तो तुसी अपनी सारी लाइफ इंजॉय करनी है तो तुहानू अपनी लाइफ दा ये सब तो सेंसिटिव और सब तो इम्पोर्टेंट फेज जो चल रहे है, जो वो के एक लाइक 10+2 वाले फेज है,
1: हाँ जी
0: इस फेज दे विच और अपने ग्रेजुएशन वाले फेज नू थोड़ा जा होर सीरियस लैके चलन दी जरूरत है। अगर बच्चे इन्हां सालां दे विच, इन्हां 4-5 सालां दे विच कड़ी मेहनत कर लैणगे और इन्हां सारे मनोरंजन दे साधनां नू लिमिटेड रखनगे, मैं यही नहीं कहंदी कि तुसी बिल्कुल छड़ दो,
1: हाँ जी हाँ जी
0: लिमिटेड रखो, टाइम लिमिट कर लो, ठीक
1: ठीक
0: है,
1: है
0: ते ओदे नाल बड़ा फर्क पै सकदा है कि ओह एक लिमिटेड लिमिट टाइम लिमिट्स और जिन्हों आपां कह दी कि टाइम टेबल बना के चल पैन कि हाँ असी इन्ने क टाइम लई ए चीज यूज करनी है बस दैट्स ऑल,
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: ए भी। और बच्चे वो चीज करके समझदे उन्हां नू, मतलब बच्चियां नू ए चीज दी बिल्कुल, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन है जिदा कि असीं पहलां गल करिए कि जदों बच्चियां च लैक ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है उन्हां नूं कोई अंदरूनी तौर ते काम करन दे लई कुछ खिच है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दा कोई उद्देश नहीं, उद्देश
1: बिल्कुल जी
0: ही नहीं ओह भटक रहे ने, तां
1: हाँ जी
0: ओह उन्हां नूं सारियां चीजां ओह जिहड़ियां स्टडी वगैरह सब कुछ बोझ लगदा है कि इहदा तां
1: बिल्कुल
0: कोई फायदा नहीं है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बट आई एम श्योर कि जदों इहो जे बच्चे जाके अगे जाके थोड़ा ग्रेजुएशन काइंड ऑफ जदों इहो जे बच्चों नूं थोड़ा जिहा पता लगदा है कि हाँ वाकई कुछ उन्हां नूं मोटिवेशन दा सोर्स मिलदा है कि हाँ भी वाकई असीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे सीगे, हुण जो टाइम है असीं अगर कर लिए तो इहो जे बच्चे बहुत अगे वध जांदे ने, बस
1: बिल्कुल
0: एक
1: जी
0: मोटिवेशन दी लोड़ हुंदी है उन्हां नूं।
1: सही राह दिखाने की लोड़ है।
0: बिल्कुल उद्देशहीनता ही उन्हां नूं जिहड़ी है ओह स्टडी दे प्रति उन्हां दा जिहड़ा नकारात्मक एटीट्यूड है ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਹੀਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣਗੇ।
1: ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ
0: ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
1: ਹਾਂ
0: ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1: ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ
0: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀ
1: ਹਾਂ ਜੀ
0: ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ